आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 252। संगीत सरिता में सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर भाग 5। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के।

सुबह 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनेंगे भाग 37। इसे आप दोबारा बजकर 30 मिनट पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका कानन देवी पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष का पुनः प्रसारण, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज बजकर 30 मिनट से सदाबहार नगमे, 3 बजे

हेलो सहेली, चार बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी भाई हो तो ऐसा, ये कहानी सुनिएगा लेखक और वाचक स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। पांच बजकर 30 मिनट पर ताराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम सुनेगा, शाम 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग, कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, भाग 5। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा, भाग 3। प्रस्तुतकर्ता है सुबैर खान। हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा पीहर पुराण, ये झलकी, लेखन श्याम सुंदर भारती का, निर्देशन सुबोध निगम का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका कानन देवी पर। रात 10 बजे छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे, फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर देह हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में आज सुनिए राग मुल्तानी। संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि हम कुछ दिनों से संधि प्रकाश रागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले राग पुरिया, राग मारवा, पुरिया धनाश्री और पुरिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उस राग का नाम है मुल्तानी। जैसा आप लोग जानते हैं, राग मुल्तानी के गाने का समय है सायंकाल 5 से 6:30 तक का। इसमें रिखप गंधार धैवत कोमल है, मध्यम तीव्र है, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। इसका उगम जो है टोड़ी ठाट से होता है। इसके आरोह में रिखप और धैवत वर्जित हैं और इसका अवरोह जो है संपूर्ण है, इसलिए इसकी जाति हो गई ओड़व संपूर्ण है। वादी स्वर पंचम, संवादी षडज। इसका रस श्रृंगार माना जाता है। मुल्तानी भी बहुत ही लोकप्रिय कर्ण मधुर राग है। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग मुल्तानी में मैं आपको दो बंदिशें सुनाने जा रही हूं। पहली वाली जो है ताल तीन ताल में निबद्ध है और दूसरी बंदिश ताल एक ताल में।

अभी आपने राग मुल्तानी का परिचय सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग मुल्तानी में बिस्मिल्ला खां और साथियों का शहनाई वादन।

0: आप मेरे नाम बेटा।
1: क्षमा कीजिए पंडित जी, मुझे आने में जरा देर हो गई।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोनपुर निवासी तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। बेटा, आज हम सबको माता संतोषी का कोई ऐसा भजन सुना दो।

0: রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন, শিল্পী ছিলেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামলী দাস। আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন পর্যায়ক্রমে দিল্লি কেন্দ্রের প্রভাতি হিন্দি, ইংরেজি এবং সবশেষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইংরেজি সংবাদ শিলং কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के 2 सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री

0: जंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के

0: होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल

0: मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कन्नडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमरीका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओर्मूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर दो या तीन कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
2: इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनः परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय

मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार के बोल हैं शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। जोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्म दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थी बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

दयानंद देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़।

आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती थी।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता की मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रहीं, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

अपनी छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक

हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमी नोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थी।

अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनके कुछ ऐसे ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

में संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

आनंद देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थी, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थी, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई ना कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

केंद्र के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जुड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़ है।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी मैम। आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज़ आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आपने खेत में बैठ कर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सारी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपने खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना MP में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती है भी, थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रहतनामा, सखी सहेली और आपकी जो मंच आएगी तो ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: विशेषकर खास तौर से एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को,
0: श्रोताओं
1: को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है जिसके जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलो सर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बढ़ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप जयपाल बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेल जोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्यवर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाए?
1: फिर प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गए हैं, बेकरी में हैं।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकी, ये सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता हूँ।
0: अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल जाए।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गया, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए, आपकी पसंद का

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया। मजाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया,
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान धोन है, लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले सन्ना पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा गेड़ा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन में कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: दुनिया

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंगली सुसोता संग बस स्टैंड बंदा विदेशी को चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा, 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ, हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकान हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के। तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ, ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होते रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ, तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में, फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ।
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की ढाल ना मोतियों के हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर का साथ जो लोग रहता है ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे गतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊं, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है, और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लिया भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप

0: के आने से हमें आपको बताऊं स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है। उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं। और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से जी, उसमें काफी लेटर लिखे।
1: बताइए इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: फिल्म मकान में प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
1: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया दीदी, सभी सच्चे सहेले हेलो।

0: लिए हलो फरमाइश गीत माला सभी सदाबहार नगर में अभी जो शुरू हो गए ना वो मन चाहे गीत वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
1: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
0: खत मैं लिखने मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
1: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
0: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी
1: वो सभी कार्यक्रम।
0: मैं एएम पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम जो हमारे राजकोट अहमदाबाद बड़ोदरा उसके पर सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
0: ओ बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
0: दो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे वो लेके सुनता था।
1: वो अभी भी आपके पास है?
0: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
1: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफ मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफ नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। जो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बजनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है वो साइट पर, तो मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा एक घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब है
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: এতক্ষণ মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলাসহর। শ্রোতা বন্ধুরা, এই অনুষ্ঠান শুনছেন 103.2 MHz এবং নিউজ অন AIR অ্যাপের মাধ্যমে। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে আপনাদের পছন্দের লাইভ বাংলা গানের অনুষ্ঠান সুরের ভেলায়।

0: নজরুল গীতির অনুষ্ঠানের সবশেষ গানখানি শুনলেন অধীর বাগচির কণ্ঠে। নজরুল গীতির অনুষ্ঠান আজ এই পর্যন্ত। আকাশবাণী কৈলাসহর স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় দুপুর 12:59। এখন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेख

0: उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হল আকাশবাণী কৈলাসহর। শুরু হচ্ছে হিন্দি ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠান চিত্রমালা। চিত্রমালা অনুষ্ঠানে শ্রোতা বন্ধুরা আজ শুনুন বার্তা ছবির গান বাপি লাহিড়ি, আমিতি এবং সহশিল্পীদের কণ্ঠে প্রথম গানখানি।

0: বাংলা ছায়াছবি গানের অনুষ্ঠানে শ্রোতা বন্ধুরা সবশেষ গানখানি শুনলেন অজানা শপথ ছবি থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आजा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोंसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी

0: कॉलर।
1: हेलो सहेली।
2: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
1: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रही हैं, यानी कि राजस्थान से, है ना?
2: हाँ जी मैडम जी।
1: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
2: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा।
3: सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिहार, छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द डे. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from their women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. World number 10 Sindhu will now face China's world number 4 Shan Yufei in the semi-finals tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं।
0: अरे वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है।
0: अच्छा।
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत
1: उन्हों
0: अच्छी
1: की
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुँचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए, और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है।
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं?
1: जी मेरी जो शादी नहीं है, मेरी दीदी की हो गई है।
0: अच्छा अच्छा आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सैनी में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का।
0: अच्छा अच्छा आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना
1: कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया। तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती। अच्छा, और थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी इसकी बर्थडे हुई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरह से। और हाँ, बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरह की दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है।
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना तो जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है और बहुत अच्छी चीज है। वो सजती है, सवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका।
0: अच्छा अच्छा,
1: आजीवा रोड के।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आपको बताइया। और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं। उसको तो क्या है कि वो गाना, रेलिया, वो सब बहुत पहले से सुनती रहती है। और सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, तो तेरे नाम का गीत सुनती है वो।
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा, सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला कश्मीर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का, पश्मीना एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरी 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े हैं?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं, मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, हम घर का काम खत्म करके बस ये करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शॉल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहाँ तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की।
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: जी, दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते हैं।
0: अच्छा तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी मैम।
0: सकें। तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी, मैं दिलवाले फिल्म है ना, उस सबका कोई भी गीत नहीं सुन

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहाँ पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है, रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद सिल्क भी विख्यात है, फेमस है। यहाँ का आम भी फेमस है।
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: फेमस है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ,
1: उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा,
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ,
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं, आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगी हुई है।
0: हाँ, अरे
1: और
0: वाह,
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसी में रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

साथियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाए, डगर डगर पर वृक्ष लगाए।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही है आप हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी जी।
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है? मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी, है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता था, उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम। तो अगर वो निंटू दिशा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग।
0: हाँ,
1: तो ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती हूँ मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है।
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गहने पे का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?

0: ऐसे मशीन से रिपेयरिंग होता है नहीं होता, मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
1: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
0: रफो होता है, हाँ इसे रफो होता है मैडम।
1: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
0: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
1: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
0: गाना गाना अच्छा लगता है ना मैडम, गाके बताती हूँ।
1: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
0: जी, इनका नाम है फूल और अंगार और मेरी फरमाइश भी यही है। और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिले में ना चंचल नाकल बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं सलमान खान का,
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इंद्रजी यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सखी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय के?
1: नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो, पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से बहुत, जो हमें कहीं से खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है, अगर संगीत जो होता है ना वो एक दूसरे से बांध देता है ना, और साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल संगीत के प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी, मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि हम अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, रिलैक्स हो जाते हैं ना एकदम, ऐसा लगता है ना। तो आपको जो गाना सुनना है ना वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से।
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करती हैं, आपको क्या करना पसंद है?
1: मैं घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है ना,
0: हाँ,
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात
1: मुझे,
0: है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ। और बाकी का, हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये
0: अरे
1: सब
0: वाह, क्या बात कर रही हैं आप, इतनी
1: चीजें।
0: तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें खिलाती
1: कहते
0: होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं
0: हाँ,
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी।
0: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए ताकि हम भी आए और आपने जो बताई हैं चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
1: अरे
0: क्योंकि बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दे, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी, बस थोड़ी ही देर के बाद।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
2: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे, स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी।

हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ आसपास वाले।

0: बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विजू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विजू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विजू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विजू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। यह शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हो तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं, कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है, लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो, उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

गीता गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। रास्ते अब सीधे नहीं रहे, जैसे किसी ने मोड़कर सपनों की दिशा बदल दी हो। कदम बढ़ते हैं पर हर कदम पर एक अदृश्य बंधन सा महसूस होता है। आजादी और जकड़न के बीच दिल झूलता रहता है। नींद में भी ख्वाब डर कर सिमट जाते हैं। सीने में कोई टूटी हुई खामोशी चुभती रहती है और फिर भी सांसों की डोर किसी उम्मीद से बंधी रहती है।

बिजली की चमक में जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है, पर बरसात सब शब्द भिगा देती है। भीगी हवाओं में तेरा एहसास यूं उतर आता है जैसे तू पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हर बूंद दिल पर दस्तक देती है और मन बस तुझसे मिलने की जिद कर बैठता है। ये मौसम नहीं, कोई अधूरी चाहत सी लगती है जो बाहों में सिमट जाना चाहती है। कांपती ठंड में भी दिल की गर्मी तुझे पुकारती है जैसे बस एक आलिंगन बाकी हो। और मैं इस बरसात में बस इतना चाहती हूँ कि तू पास आकर मुझे थाम ले।

पलकें जब भी झुकती हैं तो भीतर एक छवि जगमगा उठती है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। लज्जा भी अब श्रृंगार बनकर चेहरे पर ठहर जाती है और हर धड़कन में उसका ही स्पंदन बस जाता है। हवाओं में भी अब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है।

तब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है। मेरे नयन रूपी दर्पण में अब बस साजन बसा हुआ है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हाथों में उसका हाथ आते ही जैसे सारी दुनिया थम गई, खुशी इतनी कि शब्द भी अब साथ नहीं दे पा रहे थे। दिल हल्का होकर आसमान में उड़ने लगा, मानो जमीन का सहारा ही छूट गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी उलझन है, जैसे चलना भी अब मुस्कुराने लगा हो। आंखों में चमक है, होठों पर खामोशी, और मैं उसे थामे हुए इस खुशी में बहती जा रही हूँ।

फूलों की खुशबू भी आज कुछ और ही रंग लिए हुए है, जैसे प्यार ने उन्हें भी सजा दिया हो। हर कली में छुपा एक नाजुक सा एहसास है जो दिल के बहुत करीब उतरता चला जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां भी जैसे किसी मुलाकात की कहानी सुनाती हो। हवाओं में बिखरी ये महक मन को धीरे धीरे उसके नाम से भर देती है। हर फूल अब एक संदेश बन गया है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और मैं उन फूलों में भी सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही छाया देखती हूँ।

जीवन की धूप जब तपती है तो तू ही वो ठंडी छांव बन जाता है। हर मुश्किल रास्ते पर तेरा साथ जैसे थके पांव को सहारा मिल जाता है। तेरी मौजूदगी में हर दर्द हल्का सा लगने लगता है, जैसे अंधेरा भी रोशनी से डरने लगे। मैं जब भी बिखरने लगती हूँ तो मुझे फिर से समेट लेता है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया का सुकून बन जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी की धूप में सिर्फ तू ही मेरी छाया है।

0: आज के छायागीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप हैं हमारे साथ और हम हैं आपके साथ। और कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अभिनेत्री जरीना वहाब को उनके जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथियों, आइए सुना जाए ये गीत येसुदास की आवाज में। गीतकार संगीतकार है रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है नैया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: विविध भारती के चाहने वालों के लिए अगला गीत है अमिताभ बच्चन, एस जानकी, शब्बीर कुमार और अनु मलिक की आवाजों में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है मर्द।

गोरा, सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास की आवाज में। गीतकार संगीतकार है रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है चित चोर।

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: বিনামূল্যে নিজের পঞ্জীকরণ করান।
1: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মান ধন যোজনা অন্নদাতার পরিশ্রমের সম্বল, পেনশন দ্বারা সুরক্ষিত তাদের ঘর। কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
2: अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
3: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।